ना जा तू मुझे ना कि अब जरूरत तेरी तू है दूर मुझसे आजकल तेरी तो होगी है मेरे आजकल हाँ तू राज करे जा राज करे ना मुझे ना फिक्र इस चीज की तू राज करे जा हाँ मैं करता हूँ ही पाप आजकल तू देखे मुझे टीवी पे जना आजकल मुझे ना फिक्र तेरी अब ना जरूरत तेरी मैं करता हूँ हिप्पा हे है मेरी जरूरत हाँ अच्छी भली थी तेरी सूरत पर आ गई पसंद मुझे मेरा दिल आया।

0: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sailaway Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
8: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर, आवाज एफएम।
9: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया, अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: की आवाज आपका रेडियो आपके शहर आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू मां।
1: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
2: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
3: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज FM पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
5: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
6: Your voice in your community. This is 99.8 Awaz FM.

ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हो।

0: बाप है वो तुम्हारे, तो मैं क्या करूँ इसके बारे में।
1: अम्मी पिछले 7-8 साल से मैं इतने धक्के खा रही हूँ कि बिखलाक नाम की चीज मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमारी जिंदगी में जहर घोलने के जिम्मेदार हैं।

0: मैं दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करने वाली बीवी नहीं बन सकती।
1: कहाँ जा रही हैं?
2: तुम्हारे डैड ने भी आज तक मुझसे इस तरह सवाल नहीं किया।
3: मैं उन कामों में वक्त नहीं करता जिसका कोई रिजल्ट ना हो, जैसे तुम्हारी मम्मी को समझाना है।
4: तो फिर तो ये कॉम्प्रोमाइज होगा।

Welcome back to Awaaz FM Community Radio. आपके आवाज आपके शहर में 99.8 FM. हबजन मंडे दैट यू जस्ट हर्ड विद दिनरंग फ्रॉम द एल्बम दिल अपना पंजाबी. Awaaz FM Community Radio. आपके आवाज आपके शहर में 99.8 FM. Okay, time for me to love you and leave you now. Till tomorrow, same time, same place with Cafe Awaaz. I'll be back. Until then, take care. Bye bye. And I'm gonna love you and leave you with this track Sonu and Chan on the lyrics, the remix version of Phir Hera Phiri. Here we go.

मेरा महबूब है या जाने बहार आया है जी, फूल महके हैं और दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, या सबके गार्डन गार्डन हो गया जी। टेलीफोन करते हैं जनाब मोहम्मद अमीन कुरैशी साहब, कहते हैं जी वो वाकई इतना ही बातें करते हैं कि हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और बड़े ये म्यूज़िक बड़ा सुनाते हैं जी आप शुरू शुरू में जी। मैंने कहा जी ये सिग्नेचर ट्यून है, कुछ थोड़ा सा बजता है, कुछ मैं भी थोड़ा सा सेट हो जाता हूँ आके, तो कोई बात नहीं जी, आइंदा कम बजाया करेंगे। जिस चीज़ से आपको कुछ फिजा अच्छी ना नज़र आती हो, हम उसको ज़रूर कंट्रोल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप याद करना चाहते हैं जी राज राम को, और उनके खिदमत में एक गाना भी पेश कर रहे हैं आप। कहते हैं जी बहुत दिन हुए आपसे बातचीत नहीं हुई, बड़ी याद आ रही है आपके टेलीफोन ना मिलने मिलाने के बाद जी, तुझे खो दिया है हमने पाने के बाद जी। ये कह रहे हैं जी, ऐसा मैं नहीं राज राम जी कह रहे हैं, कुरैशी मोहम्मद अमीन साहब। तो कहते हैं जी मेरी लाइन ही ख़राब रहती है, आप मिल नहीं पाते, लिहाजा मैं आपको गाना सुना देता हूँ जी। फिल्म आन में लता मंगेशकर गा रही हैं, और ये गाना ये आपकी तरफ भेज रहे हैं मोहम्मद अमीन कुरैशी साहब जी। आदर खिदमत है।

0: जी राज राम जी, आप सीधे एयर पर चले गए जी, मैं खुश आमदेद कहता हूँ आपको।
1: नमस्कार भैया, नमस्कार भैया, नमस्कार भैया भाई, अमीन साहब, कुरैशी साहब, हम तो आपको रोज याद करते हैं। सैटरडे को मैंने फोन किया था, संडे को भी मैंने फोन किया था।
0: लीजिए,
1: तो फिर देखो भैया, ऐसे नाराज मत होना, हम तो याद करते हैं। यहाँ तो आज तो फूल ही फूल खिले हुए हैं, हम तो सोचा थे बाहरों फूल बरसाओ, अमीन साहब को यहाँ लेके आओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी आपका। कम से कम उन्हें पता लग गया, नंबर पहला तो ले गए हैं, मतलब सुन रहे हैं हम। कभी कभार आप थोड़ा सा चांस ज़्यादा दे देते हैं, वो चांस मुझे बहुत कम देते हैं। आप कहते हैं तुम म्यूजिक ना लगाया करो, सीधे आके बोला करो। मैंने कहा वाह क्या बात है।
1: मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि भाई मेरे आगे दो तीन आवे।
0: अच्छा,
1: मेरे आगे नंबर ले जाओ मेरा।
0: कोई बात नहीं,
1: मैं तो पीछे रहने वाला आदमी हूँ, सबको पीछे रहने वाला आदमी हूँ, सबकी फरमाइश सुनने वाला हूँ और दिल खुश करता हूँ।
0: फराग दिली की बात है जी, फराग दिली की बात है। आप माशाल्लाह खुश करते हैं, खुश रहते हैं और खुश होने देते हैं।
1: मौसम मौसम भैया क्या तो बोले, बहुत सुहाना मौसम है
0: जी, बड़ा अच्छा मौसम है। धूप सिर्फ नहीं है यहाँ पे सऊदी में, आपके पता नहीं क्या कुछ हाल है।
1: एकदम ना गर्मी है ना एकदम ठंडी है, बहुत मीडियम इतना फर्स्ट का तापमान है, तापमान नहीं है लेकिन गर्मी बहुत अच्छा है, बहुत
0: गर्मी है ना जी। ये हमारे तो यहाँ तक 22-23
1: में तीन चार दिन क्या दो हफ्ते से मैंने शर्ट पहना ही नहीं है, विश्वास ऐसे घूमता रहता हूँ घर में।
0: मतलब ये मसल दिखवा रहे हैं आज आजकल फिर है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है,
1: क्या बात है, बस चलो बस। थैंक यू भैया, सुनाओ भैया जी। हमको तो गाना सुनना है और सुनाना है
0: जी। नहीं नहीं, हमने आपका गुनगुनाना सुनना है पहले, वो कीजिए।
1: अच्छा अच्छा, वो तो गुनगुनाएंगे जरूर। हाँ। ये मुकेश का ही आवाज है और फिल्म का नाम है एक फूल और चार कांटे।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी।
1: तो फूल में तो जाती कांटा है लेकिन किसी ने गिनती रखा होगा, बोलते एक फूल और चार कांटे।
0: नहीं नहीं, वो है जो फिल्म भी ऐसी थी ना, क्या थी, वहीदा रहमान के चार चाचे थे क्या था।
1: अच्छा फिल्म था, वो तो फिल्म भी बहुत अच्छा था,
0: चाचे थे ना चार, उसके
1: चार चाचे थे, उसका नाम उसके चाचे
0: रखा हुआ। वहीदा रहमान फोर ऑफ हर अंकल।
1: थोड़ा गाना गुनगुना देवे
0: जी। बिल्कुल, मैदान हाजिर है सरकार।
1: थैंक यू थैंक यू
0: जी जी जी,
1: आ जाओ। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
0: क्या बात,
1: मतवाली नार ठुमक ठुमक।

0: खाली नाद। ये गाना सुनना है, सुनाना है सबको।
1: थैंक यू जनाब,
0: आपके लिए खास ये गाना दे देता।
1: आ गया जी, आ गया गाना जी, आ गया बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जी आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। ये हजरात थे जी हमारे राज राम जी, जिन्होंने सुनना चाहा जी फिल्म एक फूल चार कांटे, और जवाब दे दिया आपका काजी अमीन साहब के साथ। खुश हो जाइए आप भी, उन्होंने कहते हैं जी मैंने कोशिश की आप ही नहीं मिलते। बहरहाल जी आप दोनों का खुदा मनवाए बहुत जल्दी, और हम तो पेश कर सकते हैं जी आपके लिए गाना, हाजिर खिदमत है जी। ये है आखों साईं और सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM साउथ हैम्पटन।

0: जी हेलो जी, सलाम अलैकुम जनाब कुरैशी साहब, आज आ गए हैं सीधे एयर पर। जी जी, आप एयर पर बोल रहे हैं।
1: वालेकुम सलाम जनाब, राइड आपको मेरा नमस्कार कहना। और
0: जी आपका नमस्कार पहुंच गया।
1: स्पेशली मैंने आपके लिए गाना लगवाया था, नो हार्ड फीलिंग।
0: अच्छा, ऐसी बात है जी, ठीक।
1: ये लगा रहता है आधे एक परंपरा है, ये भी है कि आप कपड़े ना उतारा करो कि कोई आ जाएगा।
0: अच्छा, यह बात है। एनीवे वो बात रहा हिसाब की करें, कपड़े उतारे हुए हैं उन्होंने धूप लगाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ मतलब मसल वगैरह हैं तो है ना, और मैं और आप क्या दिखाएंगे कपड़े उतार के, गार्डन में बैठे हैं वैसे कहीं नहीं गए। एनीवे कुछ और कहना है आपने,
1: बताए क्या है जी? उनका फिक्र है, नजर लग जाएगी आज का, नजर लग जाएगी।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, देखेंगे देखेंगे। नज़र के लिए बहुत सारी मिर्चें हैं हमारे पास, घुमाएंगे खूब और नज़र किसी को नहीं लगेगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और कम से कम इस धूप में थोड़ा सा घूमने का मौका सबको मिले। आप भी कहीं घूम रहे हैं या घर में हैं?
1: घर में हूँ।
0: अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ जरूर पेश करूँगा और थैंक यू वेरी मच, आपने याद फरमाया, ठीक है, अल्लाह जी। सामीन ये थे जी हमारे जनाब कुरैशी साहब मैदान में आए हैं और जवाब दे रहे हैं, कुछ और कुछ बातें हुई जो आपने सुनी, अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले एक और गीत आपकी खिदमत में पेश करता है जी अखुन साई, यह रेडियो आवाज़ एफएम साउथहैम्पटन और फिल्म फैशन से लिया गया जी, लता मंगेशकर और हिम्मत कुमार की आवाज़ में, बहारों से पूछ। दिल क्यों दीवाना मेरा हो गया, क्या बात है, अब धूप में फिरेंगे तो दीवाना तो होगा ना।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: जी सामीन, वेलकम बैक। ये आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ एफएम सोदम, रहमान साहब के साथ हैं आप इस वक्त में। जी अगला गाना जा रहा है जी आपके लिए, मिस्टर मलक सरोश मंसूर हुसैन और आपकी बेगम के लिए शमा मंसूर हुसैन जी। आपके लिए जी कहते हैं जी भाई बहन से गाना जी आपके लिए आ रहा है, मेहदी हसन और महनाज की, महनाज बेगम की आवाज़ में। दो दिलों की मुकम्मल कहानी हो गई।

थैंक यू वेरी मच अमरीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने पिछले हफ्ते से ज्वाइन किया है जी, आप आते जाते रहेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। और आपने जो गाना मांगा है जी, वो है जी नहीं अटिए ईद मुबारक। असल में उसमें अगर मैं ढूंढता तो कभी ना मुझे मिलता। असल में उसका जो बोल है वो है चन चन दे सामने आ गया, नहीं अटिए ईद मुबारक जी। नसीम बेगम और माला बेगम की आवाज़ में है जी, फिल्म पगड़ी संभाल जटा।

जैसा मैंने कहा जी, हम सब जितने भी हैं जी स्टूडियो के यहाँ स्टाफ, उन सब की तरफ से अगला एक गाना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जी। फिल्म है जमीला और कहते हैं जी, देख जी देखो दिल ले के दगा नहीं देना, कुछ ऐसी बात है जी। लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं जी, चतलकार रामचंद्रा।

देखो जी, देखो जी, दवा नहीं देना, थोड़ी सी कुछ सरसराहट थी रिकॉर्ड के अंदर जी, 1952 का ये रिकॉर्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इस फिल्म जमीला से ये गाना पसंद आया होगा। अगला एक और डुएट आपकी खिदमत पेश करता हूँ, मोहम्मद रफ़ी और लता मेश्र की आवाज़ है जी, फिल्म आधी रात। कहते हैं जी, हमें दुनिया को दिल का ज़ख्म दिखाना नहीं आता,

जी थैंक यू वेरी मच राज राम जी, आपको गाना भी बहुत अच्छा लगा जी। वाकई जी अच्छा ही गाना है, कि हमें पसंद भी आप ही की हो और गाना भी अच्छा ना हो ऐसी को हो नहीं सकता जी। आपको अगला एक और गाना सुनवाते हैं, ये भी ड्यूट है जी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का ही, फिल्म है जी सवर्णा सुंदरी जी। ये भी क्लासिकल गाना है और क्या बात है जी, कहूँ कहूँ बोले को अलिया।

थैंक यू वेरी मच जनाब कुरैशी साहब, आपने भी फ़ोन किया, राजराम जी आपने फ़ोन किया, आपको भी बहुत अच्छा गाना लगा जी। बिल्कुल यकीनन जो अच्छे गाने हैं जी आते हैं, आते हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। आते आते जी लोजिए जी, अगला एक गाना आ रहा है जी, बड़ा ख़ास किस्म का जी, हमारी बेगम के लिए जी, रोशनी बी के लिए जी। कहती हैं कि कहती नहीं है, हम कहते हैं जी, बल्कि उन्होंने आ गई मैदान में, आ गए जी। इश्क परिंदा, इश्क के परिंदे फिल्म का नाम है जी, के का घोषाल नाम है जी लड़की का, वैसे काको खुशहाल होता तो अच्छा था मैंने, एनी वे के का खुशहाल, और सानू निगम की आवाज़ में है जी। कहते हैं जी, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, फिर दोनों मिलकर अपने रब से क्या मांगें, कुछ इस तरीके से।

जी एक हथेली तेरी और एक मेरी हो जी, आपने सुना जी, थैंक यू वेरी मच जी। अगली एक फरमाइश है जनाब राजराम जी आपकी, आप कहते हैं जी ये मैंने स्पेशल गाना करना है जनाब यास्मीन बानो फरजाना जी को, वो काफ़ी दिनों से आ नहीं रही हैं क्योंकि वो अक्सर मसरूफ़ रहती हैं अपनी अम्मा जी के लिए जिनकी तीमारदारी वगैरह करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब खरीद से होंगे अगर सुन रही हैं तो। वैसे राजराम जी ये जो दोनों है ना अशोक और वो यास्मीन बानो दोनों ही मेरे स्क्रीन से आज गायब हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी आवाज़ कहीं सुन रही हूँ। वैसे मैं सुना देता हूँ उनको ये गाना, आप सुनाना चाहते हैं जी कौन अपना और कौन पराया। वैसे सारे ही अपने जी, कोई शक नहीं, पराया हम किसी को कहते ही नहीं हैं। बरहाल फिल्म का नाम है ऐसा मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ है, सुन ज़रा ज़रा सुन हसीना ए नाजनीना मेरा दिल तुझी पे निसार है।

ज़रा सुन हसीना ए नाज़नी जी, आप सुन रहे थे राजनाम जी, आपकी पसंद जी पहुंच गई यास्मीन बानो को जी। आप सब सुन रहे हैं जनाब रेडियो आवाज़ एफएम साउथहैम्पटन, और आपके लिए है जी, आप सुनते हैं 99.8 एफएम पे, और अगर थोड़े से बाहर हैं तो दो फ्रीक्वेंसी और हैं हमारी, क्या है, DAB 7D और 9C पे, और उससे भी थोड़े से दूर हैं तो फिर सुन रहे हैं आप www.awazfm.co.uk में, वहाँ पर जाएँ और पूरी तस्वीर पाएँ, लिसन लाइव सुनें या लिसन अगेन सुनें, और वहाँ से आप रابطہ भी कर सकते हैं हमारे साथ जी। अगली फरमाइश आ रही है जी काजी मोहम्मद अमीन साहब, आप न्यूली वेड जोड़े पाकिस्तान को यानी सरोज मंसूर मलिक और उनकी बेगम शमा के लिए पूरा उनको गाना एक और पेश करना चाहते हैं। वैसे तो भाई शादी को कई दिन गुजर गए हैं, मगर आप कहते हैं जी हमें लगता है कि आज ही जी हमारे एक यार की शादी है, और यही आप सुनना चाहते हैं जी। लीजिए जी, हम तो यहाँ हैं सुनाने के लिए आपके लिए, ये जा रहा है जी ऑल द वे टू पाकिस्तान, हाजिर खिदमत है। मोहम्मद रफ़ी को सुनना चाहते हैं जी, आदमी सड़क पर, आज मेरे यार की शादी है।

सुन मेरे यार बरखुदार प्यार हुआ ऐसे जी। अशोक जी आपकी पसंद थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पसंद। एक और बहुत जल्दी आपके लिए पेश करूंगा जी। अगली पसंद है जी हमारे किसी ख़ास ख़ास मेहरबान कदरदान की जी। क्या कहूँ जी तेरे हुसन की क्या तारीफ़ करूँ, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। ख़ास ख़ास मेहरबान कदरदान की जी। क्या कहूँ जी तेरे हुसन की क्या तारीफ़ करूँ, कुछ कहते हुए

0: जी बड़ा मुश्किल है जी समझना कौन किसी से क्या मोहब्बत करता है। वैसे होता तो कोई ऐसे जी क्या करें, फिर भी कह सकते हैं जी हम कि सारे शहर में आप जैसा कोई नहीं। जी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आशा भोसला साथ दे रही हैं। फिल्म बेराग में एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं।
1: सारे शहर में आपसा कोई नहीं, कोई नहीं।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

जी थैंक यू वेरी मच अशोक पटेल जी, आपने जो फरमाइश की थी आपके पहुंचा दी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़े से लेट आए हैं, किसी वजह से मसरूफ़ रहते हैं आजकल आप, तो आप तो शायद चलो आ तो गए, आपका बड़ा शुक्रिया, आपको याद किया था राजराम ने भी, और उनका भी बहुत शुक्रिया जी, कुरैशी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, बाकी जिन्होंने हमें जहाँ जहाँ सुना जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आप सुनते हैं फिल्म शेर शाह से ये मैंने गाना गा लिया है, राता लमिया, असीस कौर, जुबीन नटियाल एंड तनिष्क भक्ति की आवाज़ है, हाजिर खिदमत है।

समीन आइए आपको अगला गाना सुनाता हूँ। कहते हैं ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। फिल्म है सपने साजन के और गाने वाले हैं कुमार सानू एंड अलका याग्निक।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.
4: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search Southampshire College Group.
5: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने-कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
7: Aapki Awaaz, aapka radio, aapke shahar mein, Awaaz FM.
8: Namaste. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੋਬੇ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਕਰਾਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਖੈਰੀ ਸੇ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੋਂਗੇ ਆਜ ਕੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਜੀ ਹਾਂ ਮਹਿਫਿਲ ਸ਼ੇਰ ਓ ਗਜ਼ਲ ਕੇ ਤੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਇਖਤਿਤਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
9: खुशबू जैसे हो मिले अफसाने में
8: जी हाँ बिल्कुल ये बात हकीकत है खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में क्योंकि अब वो दौर आ चुका है कि ऐसे प्यारे प्यारे से लोग महकते खुशबू की तरह महकते लोग खूबसूरत लहजे के लोग जरा कम ही मिलते हैं
9: मिले
8: मगर इसकी बात कुछ इसी तरह है कि हम अगर चाहें तो अपने आप को ऐसा ही अफसानवी बंदा बना सकते हैं ये अपने हाथ में है
9: खुशबू जैसे
8: प्रोग्राम शुरू हो चुका है आप और हम साथ साथ हैं साथ साथ रहिएगा क्योंकि आप मुझे सुनते हैं आवाज है प्रोग्राम सुनते हैं मेरे साथ महफिल शेर ओ गजल और शेर ओ गजल की इब्तिदा हो चुकी है हम चलते हैं इस गजल को मुकम्मल सुनने की जानिब और उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे पोइट्री के साथ आपके लफ्जों के साथ आपकी ईमेल्स के साथ आपके मैसेजेस के साथ तो ये सिलसिला

जी तो बात हो रही थी खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में। अफसानों की बात तो है मगर अब मुस्तकिल बात हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अफसाने की कहानी तो फिर अफसाने ही होते हैं, मगर अफसाने भी तो हम जैसे ही लोगों से बनते हैं। अफसाने में भी हम जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, कोई अलग कोई लोग नहीं आते, कहीं से नहीं आते, कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होते, मगर हम जैसे ही कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ कैफी आजमी अपनी एक गजल में कुछ बड़ा दबा दबा सा प्यार का इजहार कर रहे हैं, ये भी देखें मोहब्बत करने वाले लोगों की ये कहानी होती है जो खुद उन्हीं की जबानी होती है। कहते हैं कि झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जमा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। गौर कीजिएगा इस शेर पर कैफी आजमी साहब ने क्या खूबसूरत प्यार और खूबसूरत लहजे में कहा है कि तू अपने दिल की जमा धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जमा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। वो पल की जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल कि जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। हा हा, दिल बेकरार है कि नहीं, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। जब बात मोहब्बत की होगी, चाहत की होगी, तो ये दिल बेकरार क्यों नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल उसी तरह कि जैसे आप हैं बेकरार। हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर आपके पास मौजूद है, नहीं है तो नो टेंशन, नो मसला, घबराने की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। आप नंबर नोट कर लें, पेन कागज है ना आपके पास। नहीं, वैसे याददाश्त भी आपकी मुझे पता बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं पेन कागज, मुख्तसर सा नंबर है, 7 डिजिट है, इतनी लंबी कोई 70 डिजिट तो है नहीं जो याद नहीं रहेंगी, है ना। आप बताइए, मैं एक अपना शेर भी आपको सुनाता चलूं। वैसे गजल है, गजल शामिल जरूर करूंगा प्रोग्राम में किसी, मगर एक शेर जरूर आपकी नजर करना चाहूंगा, आपकी खूबसूरत सी समात की नजर करना चाहूंगा। कि अशकों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, अशकों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, शब भर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग। चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, दागे गमे फराक को धोते रहे हैं लोग, है ना। चारा न था कुछ इसके सिवा अहद इश्क में, दागे गमे फराक को धोते रहे हैं लोग। अशकों में दिल का खून समोते रहे हैं लोग, शब भर हंसी के पर्दे में रोते रहे हैं लोग। कैसा लगा सही बताइएगा, हाँ क्या रिस्पांस मुझे पता चलेगा तो फिर मैं कुछ कहूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो जब तक हम आते हैं एक और बड़ी खूबसूरत गजल की जानिब जो मैं शामिल करना चाह रहा हूं, और ये गजल उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि कोशिश तो मेरी ही होती है कि मैं ऐसा ही कलेक्शन आपको सुनाऊं कि जैसा आप सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए इस वक्त मेरे पास जो मैं शामिल करना चाह रहा हूं, ये आवाज है, किसकी आवाज है, बिल्कुल सही कहा, यह आवाज है अताउल्ला खान ईसा खेलवी की, और ये कुछ पूछ रहे हैं किसी से। हाँ ये देखते हैं कि क्या कहते हैं, चलते हैं अताउल्ला खान ईसा खेलवी की जानिब।

तो ये बात हो रही थी हथवेक के जोगिया दस मैनों। अब ये जोगी क्या बताता है क्या नहीं बताता, ये तो बात की बात है। हमें इससे मसले में पढ़ना भी चाहिए, खामगा किसी के चक्रों में पड़ जाए तो फिर कहते ना कि इंसान कहीं का नहीं रहता। कैफी आजमी साहब की एक और गजल मौजूद है मेरे पास, जिसे वैसे तो गाया है जगजीत सिंह साहब ने गाया, बड़ा खूबसूरत गाया, इसको मुख्तलिफ गजल सिंगर्स ने इसको गाया है, अपनी आवाज से खूबसूरत आवाजों से सजाया भी है। मगर क्या ख्याल है, मुझे मौका मिला तो मैं भी अपनी आवाज से इसको सजा लेता हूँ और अपनी आवाज को बेहतर बना लेता हूँ इसको पढ़ के। कहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें टेढ़े जा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। ये अश्क जो पीते जा रहे हो, तुम क्यों इन्हें छेड़े जा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ये मैंने आपकी बात, आप भाई आपकी बात नहीं, ये जो हमारे दूसरे दोस्त हैं इस वक्त अपने गम को छुपाने की कोशिश में मुस्कुराहट सजाए कर रहे हैं लबों पर, ये मैं आपकी बात कर रहा था। खैर भारत, ये कोई बात देखा अगर जाए तो ये सिर्फ किसी के एक खास इंसान की बात नहीं है। आजकल का दौर ऐसा चल पड़ा है यकीनन कि हम सब कुछ होने के बावजूद अपने गम को छुपाकर चल रहे होते हैं, गम को दबाकर चल रहे होते हैं। और बात सही भी है देखा जाए, क्योंकि हमारे गम से किसी को कोई हर्ज नहीं। हम ये बात कह भी दें कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं। और फिर हम अपना दुख किसी को क्यों बताएं, किसी की खुशियों में अपने दुख से खलल क्यों डालें, क्यों किसी की खुशियों को हम गारत करें, किसी की खुशियों को तबाह करें, क्यों। ये हमारा मसला है तो हमें अपने अंदर रखना चाहिए, इसको खुद ही इससे निपटना चाहिए। मेरी तो सोच ये है कि अगर किसी को हम खुशी दे सकते हैं तो खुशी दें, क्यों गम दें उसको। बहरहाल ये मेरी अपनी सोच है जो आपसे शेयर की मैंने, और आपसे इसी तरह की बातें मैं शेयर करता भी हूं। और अगर आप मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं, तो मैं आपकी ईमेल का मुंतजिर हूं। आप मुझे फौरन ईमेल कर सकते हैं, अब वैसे शामिल होना भी चाहिए।

इट्स मी अजमल शोभी फ्रॉम कराची पाकिस्तान और आप मेरे साथ सुनते हैं प्रोग्राम तो रहिएगा मेरे साथ बोलिएगा हरगिज नहीं।

जी हाँ बिल्कुल, ये प्रोग्राम जिसका प्रोमो आप सुन रहे थे अभी, ये आप सुनते हैं मेरे साथ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है। सिलेक्टेड सा प्रोग्राम नाम है जिसका, मैं फिलहाल शेर गजल और मैं कराची पाकिस्तान से आपका साथ दे रहा हूँ। और इस वक्त आवाज़ एफएम की जो टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे इस आवाज को जो कि साउथम्पटन में पहुंचा रही है आप तक, मैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हे, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? जबरदस्त। और अली, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खूब इंजॉय कर रहे हैं? मजा आ रहा है? पक्की बात है ना? मुझे बताइएगा जरूर, मैं मुंतजर रहूंगा अपने इस तमाम मेंबर्स, टीम मेंबर्स के फीडबैक का, इसलिए कि आपस में हमें साथ साथ एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे की खामियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एक दूसरे की अच्छाइयों को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। हर वफा एक जुर्म हो गया, हर वफा एक जुर्म हो गया, दोस्त कुछ ऐसी बेरुखी से मिले। फूल ही फूल हमने मांगे थे, फूल ही फूल हमने मांगे थे, दाग ही दाग जिंदगी से मिले। जिस तरह आप हमसे मिलते हैं, जिस तरह आप हमसे मिलते हैं, आदमी यूं ना आदमी से मिले। ये इसीलिए मैंने सुना ये कि कुछ हमारे दोस्त देख रहा हूं इस वक्त के, अब आप कहेंगे मुझे नजर कैसे आ रहा है? नजर आने के लिए कोई कैमरा लगाना जरूरी नहीं होता, दिल की आंख होती है, इंसान की अपनी तस्वुराती एक आंख होती है जो देख लेती, तो बहुत दूर देख लेती जहां शायद कैमरे की आंख भी नहीं पहुंच सकती। पर मेरी कोशिश दोबारा ये है कि मैं आपके उन तमाम खूबसूरत सी बातों का, लहजों का मुतलाशी रहता हूं मैं कि हो सकता है कहीं से मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इस सब और इस सब को आगे पहुंचा दें। आप भी कोशिश करें, जिससे मिले हंसकर मिले, मुस्कुराकर मिले, प्यार से मिले, मोहब्बत से मिले, मगर किसी खातून से गले मत मिल लीजिएगा। बात में शोभी साहब आपने कहा था जिससे मिले मोहब्बत से मिले, प्यार से मिले, गले मिले, तो मैं ऐसा नहीं, जिससे मिलना है उससे जरूर मिले, सब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा भाई, आपस की बात है। अब इतना भी इंसान नहीं कर सकता कि मैं कहूँगा नहीं भाई, आपस की बात कुछ भी कर लें, बहर ख्याल रखिएगा, जो कुछ भी करें अपनी जिम्मेदारी पर बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है हमारी जानिब से आपको। प्रोग्राम में गजल का इंतखाब कोशिश की कि कुछ बेहतर हो, अच्छा हो। और इस वक्त जो है मैं सोच रहा हूं कि एक और अफशा की आवाज में शामिल करूं मैं, यार मंगिया से रब्बा केड़ी में खुदाई मांग ली, गल तो ठीक ही, तो फिर इंज करने के पहले सुनने फिर बाद च कोई होर गल करने, ठीक है ना? आओ फिर सुनने अफशा की आवाज, यार मंगिया सी रब्बा केड़ी में खुदाई मांग ली। चलिए आगे सुनते हैं।

0: आपकी आवाज आपका रेडियो आपके शहर में आवाज FM।
1: ये आवाज आप सुन रहे थे भी अफशां की। अब प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अग्निल शोभी के साथ आवाज FM भी, और ये प्रोग्राम मैं कराची से आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ ये दो घंटे जो आप मेरे साथ गुजार रहे हैं या मैं आपके साथ गुजार रहा हूँ, ये अच्छे और यादगार गुजरे। मैसेज करना चाहें तो आवाज वेबसाइट पर जाकर कॉन्टेक्ट में जाएंगे, उसके बाद वहां से आप जिस प्रेजेंटर को, जिस आरजे को, जिस आरजे डीजे को आप मैसेज करना चाहें आप वहां से मैसेज सेंड कर सकते हैं। और बात होती रहेगी, मगर पहले शामिल करते हैं एक खूबसूरत सी गजल, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।

0: का रेडियो आपके शहर में आवाज FM।
1: आपकी आवाज आपका रेडियो आपके शहर में आवाज FM।
2: थीम असम म्यूजिक चलते हैं एक मधुर सी आवाज बदर मियादाद की। पहले सुनते हैं बदर मियादाद को और उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे कि आप की ईमेल्स, आपकी कॉल्स और कुछ वो कि जो आपके जहन में कहीं छुपा हुआ है, कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, सोच में लम्हे दिन बनते हैं, दिन महीने बनते हैं, महीने साल बन जाते हैं, मगर वो बात जो की तू रहती है। खैर बहरहाल आते हैं बदर मियादाद की जानिब, उनसे सुनते हैं और फिर आपकी बात करते हैं।

उसी सुन रहे हो इस वेले आवाज एफएम। तो ये आवाज थी हजर मियादाद की जो आपने सुनी अभी। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? ये मैं आपसे नहीं कह रहा, बल्कि सरूर बारा बंकवी साहब की एक बड़ी खूबसूरत गजल है, जिसे यहां पर अगर देखें तो बहुत से सिंगर्स ने इनको गाया है अपने अपने अंदाज से, अपने अपने स्टाइल से, पर जिसने भी गाया अच्छा गाया। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? तो फिर वो उम्र भी क्यों हो तुमसे गर नहीं मिलना? सही बात है, जब तुमसे ही नहीं मिलना तो फिर वो उम्र भी क्या करनी है और क्या फायदा इसे जीने का? चलो जमाने की खातिर ये जबर भी सह लें। अच्छा यहां बात देखें, फिर मैं दोबारा वापस आ गई कि चलो जमाने की खातिर ये जबर भी सह लें कि अब मिले जो कभी टूट कर नहीं मिलना। जुदा तो जब भी हुए दिल को यूं लगा जैसे, जुदा तो जब भी हुए दिल को यूं लगा जैसे कि अब गए तो कभी लौट कर नहीं मिलना, कि अब गए तो कभी लौट कर नहीं मिलना। रहे वफा के मुसाफिर को कौन समझाए, रहे वफा के मुसाफिर को कौन समझाए कि इस सफर में कोई हम सफर नहीं मिलना। जुदा तो जब भी हुए दिल को यूं लगा जैसे, जुदा तो जब भी हुए दिल को यूं लगा जैसे कि अब गए तो कभी लौट कर नहीं मिलना। चलो जमाने की खातिर ही जबर भी सह लें, चलो जमाने की खातिर ही जबर भी सह लें कि अब मिले जो कभी टूट कर नहीं मिलना। तो क्या यह तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? वो फिर वो उम्र भी क्यों तुमसे कर नहीं मिलना? क्या फायदा से जीने का? अगर तुमसे मिलना ना हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी में बचा क्या? हर बहरहाल ये सरूर बारा बंकवी साहब की एक अच्छी गजल थी। तो फिलहाल ये है, हम आते हैं इसके बाद एक और गजल की जानिब, शामिल करते हैं उसे। और ये आवाज है उस्ताद नुसरत फतेह खान साहब की, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं।

मिले हम कभी तो ऐसे के हिजाब भूल जाए, मिले हम कभी तो ऐसे के हिजाब भूल जाए, मैं सवाल भूल जाऊं वो जवाब भूल जाए, वो किसी ख्याल में हो और इसी ख्याल में ही, वो किसी ख्याल में हो और इसी ख्याल में ही, कभी मेरे रास्ते में वो गुलाब भूल जाए, जो कभी तो पढ़ने बैठे मुझे हर्फ हर्फ देखे, जो कभी तो पढ़ने बैठे मुझे हर्फ हर्फ देखे, तेरी आंखें भीग जाएं तो किताब भूल जाए, तेरी आंखें भीग जाएं तो किताब भूल जाए, तेरी सोच पर हो हावी मेरी याद इस तरह से, तेरी सोच पर हो हावी मेरी याद इस तरह से, कि तू अपनी जिंदगी का ये निसाब भूल

जाए। वो जो देखे मेरी जानिब तो बचूं मैं एक गुनाह से, वो जो देखे मेरी जानिब तो बचूं मैं एक गुनाह से, उसे देख लूं मैं इतना कि शराब भूल जाए। मुझे गम वो दे रहा है मगर उस पे चाहता है, मुझे गम वो दे रहा है मगर उस पे चाहता है, मैं हिसाब रख ना पाऊं वो हिसाब भूल जाए, मैं हिसाब रख ना पाऊं वो हिसाब भूल जाए, मुझे साथ जाते जाते फकत इतना कह गया है, मुझे साथ जाते जाते फकत इतना कह गया है, जिसे दे दिखाई अच्छा, जिसे दे दिखाई अच्छा वो खराब भूल जाए, मुझे साथ जाते जाते फकत इतना कह गया है, जिसे दे दिखाई अच्छा वो खराब भूल जाए। वो ख्याल में किसी हो और इसी ख्याल में ही कभी मेरे रास्ते में वो गुलाब भूल जाए, कभी तू जो पढ़ने बैठे मुझे हर्फ हर्फ देखे, तेरी आंखें भीग जाएं तो किताब भूल जाए। मुझे गम वो दे रहा है मगर उस पे चाहता है, मुझे गम वो दे रहा है मगर उस पे वो चाहता है, मैं हिसाब रख ना पाऊं और वो हिसाब भूल जाए। चलिए जी, अब हिसाब किताब की बात है, हिसाब किताब की कहानी है और ये तो बरसों पुरानी है, कुछ भी कह लें सिलसिला ऐसे ही चलता है। क्यों

जी, और अब शामिल करते हैं आवाज नैयरा नूर की, मगर इससे पहले चंद शेर सागर सदीकी साहब के। बड़ी खूबसूरत बात की है दोस्ती के बारे में, और दोस्त से मुखातिब हैं, कहते हैं, मैं इल्तफात यार का कायल नहीं हूं दोस्त, मैं इल्तफात यार का कायल नहीं हूं दोस्त, सोने के नरम तार का कायल नहीं हूं दोस्त, मुझको खिजा की एक नई रुत से है प्यार, मुझको खिजा की एक लुटी रात से है प्यार, मैं रौनक के बहार का कायल नहीं हूं दोस्त। दो चार दिन की बात नहीं जिंदगी की बात, दो चार दिन की बात नहीं जिंदगी की बात, दो चार दिन के प्यार का कायल नहीं हूं दोस्त। जिसकी झलक से मांद हो अश्कों की आबरू, जिसकी झलक से मांद हो अश्कों की आबरू, उस मोतियों के हार का कायल नहीं हूं दोस्त। लाया हूं बेहिसाब बेगुनाहों की एक फर, मजबूर हूं शुमार का कायल नहीं हूं दोस्त। सागर बकदरे जर्फ लुटाता हूं नक्त होश, सागर बकदरे जर्फ लुटाता हूं नक्त होश, साकी से मैं उधार का कायल नहीं हूं दोस्त, साकी से मैं उधार का कायल नहीं हूं दोस्त। और अब वक्त आन पहुंचा है कि जब आपसे इजाजत चाहूं मैं आज के इस प्रोग्राम को खत्म करने की। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, रब ने चाहा, भगवान ने चाहा, गॉड ने चाहा, तो आपसे मुलाकात होगी यहीं, कहीं दूर नहीं, इसी जगह इसी चैनल पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए रखिएगा, तो ये दुनिया ये लोग सब आपके होंगे। अगर चाहते हैं ये सब आपके हों, तो फिर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहटों को सजाए रखिएगा। और अब अजमल शोभी आपसे एक इजाजत का तालिब है, इजाजत दीजिए अजमल शोभी को कराची पाकिस्तान से आवाज एफएम यूके साउथहैम्पटन की टीम के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बेली, नमस्ते, सत श्री अकाल, एंड अस्सलाम वालेकुम।

समय बोल रहा हूं, तेरी फूटी किस्मत की चाबी वक्त के ताले से मिलने वाली है। हैप्पीनेस की सुनामी तेरी डेस्टिनी में खुलने वाली है। बदलने वाला है तेरा टाइम और बिना बजट की भी ये फिल्म खुलने वाली है। मैं समय बोल रहा हूं।

0: From Woodmill to Woolston, from Netley to Northam, this is Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
5: Radio, the medium that's now large.
6: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
7: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sailaway Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
8: चलते हैं पाकिस्तान लाइन पर हैं अजमल शोबी.
9: अस्सलाम वालेकुम.
8: वालेकुम सलाम.
9: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
8: हां जी शुक्रिया.
9: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिस्टनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज एफएम. और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से. मेहरबानी. तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ. बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ. बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं. तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत है, मिला जुला सा माहौल होता है. जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है.
8: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है.
9: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को.
8: थैंक यू वेरी मच.
9: बस थैंक यू वेरी मच. और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूं कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहां पर, उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा. और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने एक फैमिली चैनल की तरह पाएंगे. इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे. बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं. तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जिंदगी बखैर.
8: Thank you very much, ji. Take care. Allah Hafiz. Bye-bye.
9: I love you all.

0: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमा को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए।
1: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
2: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
4: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
5: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
6: I'm going to show you the message again and you can't see if you can't do my birthday, you will get a surprise.

0: आवास आपका रेडियो आपके शहर आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया, अली भैया मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: Awaz FM is supporting local radio.
1: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
6: Radio, the medium that's now large.
7: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
8: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं मगर फिर भी थैंक यू माँ

घड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तू गई।

अस्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।